0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन।

It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal. आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

0: Τώρα μαζί με ζητάρ το ούγε γέζι από τα σαπάρ σε δε τάσα έχω χαστηρί.
1: Για να θύσε τα ρεχανά από σαπάρ και έχω με ίσμα βάσινγκ πόρτερ ο χαστηρί.
0: Ίσμα βάσινγκ πόρτερ. Μάρα με ζή μόχο κορτά νέσνελ ο μάτι νέσνελ. Καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βαρίβι. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίζε τα σαράγγε σαρά προβρή.
1: Βέλκολ τα ρεχανά τα κίλε βε χάρβα τε μούτα χάν κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ βοράλ σε ρικρέτη. Ο στόλ κούρβαλα να χασούλ δι.
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सरब रो उदार इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खसूसियात थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खसूसियात दागा दी जी कपड़े सा पोक्शोले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सारा खत्म करी जाकर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सा पोई पवात लोसीना न खर पावी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षोला रिजल्ट ये दाए दार तो हुई है दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफा बने गलसे अंदरून ला की गेट जान से पे गाले पर शेयर मार्केट से देश में मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफिज जहीर साहब सर उधर से मिला भी जी।

0: Τώρα η μαζί με τζι, τάρτο βγαίνει για πότε σα πάρσει, δεν τάσα έχω χωστηθεί.
1: Για να τι σε τάρκα να πα σα πάρκε, έχουμε ίσμα washing powder, έχω χωστηθεί.
0: Έσμα washing powder, μάρα με τζι, μόχο κορτά, national or multinational, καπνέιβολ washing powder, βορειβή. Κούρσε αξάρ γκυλάρ τα κίζε, τα σαράγγε σαρά προβρέ.
1: Βέλκολ τα ρεχανά, τα γκυλέ, χάρβα τε μούτα, χάν κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα, ίσμα washing powder, βορειβή, σε ρικρέ, ο στόλ κούρβολα να χωστούλτι.
0: अच्छा है मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सरब रो उदार तो ये या के पर इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी जे कपड़े सा प्रयुक्शली को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाखर सजुद की ओ दनोर सरफे पर इस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी ओ बला खबर अदा कपड़े सा पई पवात लोसीना नखर पवी
0: शाम इस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाई दार तो ये दाव मोता चेरता मिला वी जी
1: तारे खाना दाव तो दफा बने Andron Lucky Gate, Janzebe Gale, Pashe Markish, the Ishma main distributor, Hafez Eir Sebsar, other Tamil.

मैं हूँ असमा नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाएं। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और

खुशखबरी खुशखबरी। हुजीफा कंपनी वाला शिफा तेल का बड़ा दावा, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शिफा तेल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। शिफा तेल अरब मुमालिक, यूरोपी मुमालिक, मलेशिया, चाइना वगैरह में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। शिफा तेल पुराने गंजेपन के लिए नहीं बल्कि अभी गंजे हो या गंजे हो रहे हो तो शिफा तेल के इस्तेमाल से बाल गिरना बंद हो जाएंगे, नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे, बालों को गन्ना लंबा करता है, खारिश खुश्की सिकरी खत्म, मर्द औरत दोनों के लिए यकसा मुफीद है। हुजीफा कंपनी शिफा तिल पिशावर बन्नू लकी करक डी आई खान खैबर पख्तूनख्वा पिंडी इस्लामाबाद के अक्सर जनरल स्टोर और बेकरियों में दस्तियाब है। नवी दरियाफ्त शवी ददवा थोरो निशान वाला हुजीफा कंपनी शिफा तिल चेसड़ाए वख्तिनाए गंजाए नवी ओसोस गंजे शवी भी याए दसर वेख्तान गुरजीगी نو اغا سڑای چه سو رزی شفا تل پا خپل سر بانده مالش کی نو دده پا سر بو دوبارا نوی وشتان پیدا شی شفا تل وشتان غرزول بندوی وشتان گن او اجد کوی ده سر خارش خشکی سپینا پخا هم ختم کوی زننا مردنا دوارو ده پارا برابر فیده مند مزید معلوماتو ده پارا پا ده نمبرو رابطه کولی شی 0331 397 36 36

0: Τώρα είμαστε με ζητάρ, το οποίο είσαι από τα σαπάρ, σε δετάσα εγώ χωστητή.
1: Για να τίσε τα ρεχανά από σαπάρ και έχουμε ίσμα βάσινγκ πόρταρ, ο χωστητή.
0: Ίσμα βάσινγκ πόρταρ, μάρα είμαι ζή μόχο κορτά, national or multinational, καπνέιβολ βάσινγκ πόρταρ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίσε δαστάραγγε σαρα πρόβρε.
1: Βέλκολ τα ρεχανά, τα κυλεύε χάρβαχτε μούταχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρταρ βοήβολ σε ρικρέτη, ο στούλ κούρβολα να χωστούλτη.
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सरबरो उदार तो या चिप इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खसूसियात थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खसूसियात दागा दी चि कपड़े सब युक्शली को जोर ना जोर दाग पर गारंटे सर खत्म करी जाकर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवात लोसीना नखर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दार तो ये दाओ मोता चेरता मिला वीजी
1: तारे खाना दाओ तो दफ बने गलशे आंद्रोन ला की गेट जान से बे गाले पर शे मार्केट से देश मा मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफिज जहीर साहब सर उधर ते मिला वीजी

0: Τώρα μαζί με ζητάρ το ουγγελίζει από τα σαπάρ σε δε τόσα έχω χωστηθεί.
1: Για να θύσε τα ρεχανά από σαπάρ και έχω με ίσμα βάσινγκ πόρτερ έχω χωστηθεί.
0: Ίσμα βάσινγκ πόρτερ. Μάρα με ζητή μόχο κορτά national or multinational καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίζε τα σαραγγε σαρα προβρή.
1: Βέλκολ τα ρεχανά τα κίλε βε χάρβαχτε μούτα χάν κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ βοήβολ σε ρικρέτη. Ο στούλ κούρβολα να χωσούλτη.
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सरा ब्रो उदार तुया चेप इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासूसियात थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासूसियात दागा दी चे कपड़े सा पयुक्षले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सारा खत्म करी जाकर सजूत की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सा पई पवात लोसीना न हर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाई दार तुया जी दाओ मोता चेरता मिला वी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफा बने গলছে আন্দ্রন লাকি গেট জানছে বেগালে পশে মার্কেটে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ ইরসেব সারদার তে মেলা বেশি।

0: बारिश में ड्राइवर हजरात एहतियात से गाड़ी चलाएं, क्योंकि जगह जगह बारिश का पानी कड़ा होता है, जिसकी वजह से लोगों की कपड़े खराब हो जाते हैं और फिर राह चलते लोग अक्सर बददुआएं देना शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात तो बात लड़ाई तक पहुंच जाती है, इसलिए रफ्तार धीमी रखें और एहतियात करें। राह चलने वालों से भी इल्तिमास है कि बिला वजह सड़क पर जाने से गुरेज करें। अगर जरूरत ज्यादा हो तो गाड़ी न होने की सूरत में सड़क क्रॉस करें। जिम्मेदार शहरी बने और हुब्बुल वतनी का सबूत दें। शुक्रिया।
1: ये पैगाम आपको रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क की तरफ से पेश किया गया है। रेडियो अमन नेटवर्क, जन रंग अमन।

क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नए बुलंदियों तक पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो? तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी खिदमत आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ। राबता नंबर 0345 93 32 580।

0: ओके, तो सिकाल सीधी बात के पूछे मिला हुआ वेट पर होता हुआ कहकाल था
1: तेरी गफलत से
0: मैसेजेस पर शामिल हुआ और दुन किरतुन की सोरह मैसेजेस रोगली जहान मनना थैंक यू सो वेरी मच।